कर। और जब कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पोडियम पर चढ़ता है तो सिर्फ एक पदक नहीं जीतता, उस छोटे से गांव, उस कस्बे, उस घर तक भी एक भरोसा पहुँचाता है, जहाँ बैठा कोई आम इंसान शायद पहली बार सोचता है हम भी किसी से कम नहीं।

0: इस बार शायद इस भरोसे को नए चेहरे मिले हैं. As you know, popular sports like badminton, hockey, cricket, table tennis and wrestling are not a part of Commonwealth Games of the 22nd Commonwealth Games in Glasgow. But the absence of these sports have been a blessing in disguise for some of the lesser known sports. Para power lifting, artistic gymnastics, swimming and lawn bowls are now making headlines and our athletes representing India in these sports are showing what they are capable of.
1: ये वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी. इस बार मंच उनके सामने है. अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है. तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली है.
0: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की. पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं को उठाकर एक तरफ रख देते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है. भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है. इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने. पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए. इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला.
2: ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया झंडू कुमार.
0: ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार.
3: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे. एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए. इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे.
4: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा वजन उठाने
3: से. देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जब पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे.
0: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी. पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी. नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी.
5: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है. हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे. और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है देवेंद्र जी ने कि बहुत बड़ा दल जा रहा है, इस बार पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा. मुझे श्योर है कि हम जीत के आएंगे.
0: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया. इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए. सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है.
1: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para power lifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
0: In the same event, Paramjeet Kumar lifted 176 kgs and finished seventh.
1: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी.
6: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर. अभी मैंने रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, इसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ.
0: हाउएवर इट वॉज अगेन अ स्टोरी ऑफ सो नियर येट सो फार. जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया लेकिन उसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई. उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा.
1: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजमणि की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा.
0: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के एरन कलन को

0: सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा।
1: A unanimous decision, the winner, and through to the next round in the blue corner from India, Jomanji Singh Mandingbo.
0: इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
2: अब बात करते हैं लॉन बॉल्स की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने एक गोल्ड एक सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट्स ठान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
3: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
0: ऑन डे वन पुतुल सोनेवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे टू एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द चैलेंज ऑफ सेलिक अलेक्जेंडर ऑफ फॉकलैंड आइलैंड्स। इन द फर्स्ट सेट सोनेवाल वाज trailing, but he came back from behind to tie that set and then registered an emphatic victory in the second set.
2: जैसा आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेन्स पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाई ब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को दो सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
0: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
4: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
2: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप थ्री की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में चौथे स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने सातवें स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
0: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में सातवें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुजिया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। जिमनास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों के टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
2: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
0: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी तीन खिलाड़ी एक बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहाँ रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल हैं मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
5: कॉमनवेल्थ गेम ये बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी, मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगी। बट कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ जीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरे बहन है।
0: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
6: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
0: रीना रमेश चंद्र गुप्ता।
7: मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वाज लाइक कि हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे। आई नेवर इमेजिन कि जो मैंने एज अ फन ज्वाइन किया था, इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
0: इरेंगबम रितु चानू।
8: मैं मणिपुर से हूँ।
0: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की,

0: संघर्ष की और उन सीमाओं को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
1: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
0: बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं हिम्मत भी परखी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डट कर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां की है।
2: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनके वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल लिए आने हैं।
0: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर, एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर बढ़ती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनोवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।
1: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतरने वाले हैं आर्यन नेहरा और धक्षण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। धक्षण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
3: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा।
0: उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़ते शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
1: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
0: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है, जिनके 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत मिलाकर कुल 6 पदक है। ऑन द थर्ड स्पॉट इज होस्ट स्कॉटलैंड विद 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स, टोटल मेडल्स 4। इंग्लैंड हैज 1 मोर, दे हैव 5 मेडल्स इन टोटल। हाउएवर दे आर प्लेस्ड एट नंबर 4 बिकॉज दे हैव 1 लेस गोल्ड मेडल दैन स्कॉटलैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेशंस, साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन टू ऑल्सो विन अ गोल्ड मेडल। विल इंडिया बी एबल टू क्लाइंब अप द टैली एंड गेट ऑफ द मार्क इन द गोल्ड मेडल एंड द सिल्वर मेडल कॉलम? वी विल नो सून।
1: हर दिन कोशिश जारी है। भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए।
0: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
4: द कॉमनवेल्थ गेम्स